तुरंत पूछोगे बाकी 43 कहाँ हैं। रिसेंट रिपोर्ट्स पुट द 18 to 24% एनरोलमेंट एट 57%, द लोएस्ट अमंग द एज ग्रुप्स। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि यंग पीपल को पॉलिटिक्स पसंद है या नहीं, क्वेश्चन ये है व्हाई आर दे नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। इज इट लैक ऑफ इंटरेस्ट, कन्फ्यूजन, मूविंग हाउसेस, चेंजिंग कंट्रीज, फर्स्ट टाइम वोटर अनसर्टेनिटी, मुझे पॉलिटिक्स समझ नहीं आती, या सिंपल ओह आई थॉट आई वाज ऑटोमेटिकली एनरोल्ड। चलिए इमेजिन करते हैं कि 18 साल के बच्चे हैं जो वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, उनका स्कूल फिनिश हो गया, यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई, वो फ्लैट्स चेंज कर रहे हैं, अपनी शायद सिटीज मूव कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए, या पेरेंट्स के साथ हैं भी कि नहीं भी हैं और इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं। लाइफ में ऑलरेडी इतने चेंजेस हैं उनके लिए, और वोटिंग में इनरोल करना क्या उनकी प्रायोरिटी होगी? मोस्ट प्रोबेबली दे विल से आई विल डू इट लेटर, एंड देन लेटर बिकम्स नेक्स्ट वीक, इन नेक्स्ट वीक बिकम्स नेक्स्ट मंथ, एंड सडनली इलेक्शंस आ जाते हैं और वो इनरोल हो ही नहीं पाते। ये बहुत कॉमन बिहेवियर है। जब असं यंग होंगे हाँ असं सोचते हैं एक काम इंपॉर्टेंट तो है पर आज नहीं कल कर लवेंगे, पर कल कभी आंदा भी नहीं।

Welcome back to Radio Southland at 96.4 FM and you are listening to Namaste Southland. हम आज बात कर रहे हैं यंग पीपल क्यों इनरोल नहीं होते इलेक्टोरल में और वोट क्यों नहीं करते. कुछ लोगों को तो नॉलेज नहीं है बेसिकली, और कुछ लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स हमारी डे टू डे लाइफ में इफेक्ट नहीं करती है. बट रियली सच में नहीं करती है? वॉट अबाउट द रेंट, द एजुकेशन, द स्टूडेंट लाइफ, जो आप ट्रांसपोर्ट के लिए पे करते हो, जॉब्स हैं आपके पास, वेजेस कहाँ जा रही है, हाउसिंग की अफोर्डेबिलिटी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग्स आज कहाँ पहुँच रही है, हमारा इन्वायरमेंट कैसे है, इमिग्रेशन कैसे इफेक्ट कर रही है हमें, हमारे पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं ज़्यादा कि कम. And we can discuss these as areas of public policy without telling listeners what position to take, to be honestly. एक यंग पर्सन कह रहा है, आई डोंट फॉलो पॉलिटिक्स. मैं पूछना चाहती हूँ, ओके, बट डू यू पे रेंट?

most important problem that the youth is facing is that they don't know who to vote for. These days, youth do not listen to news. They follow social media more. Or social media mein aapka AI ka itna prevalent hai ki koi statement agar aayi hai government ke taraf se ya phir to be government ke taraf se to wo kitni genuine hai ye aapko decipher karna easy nahi hoga. But you still have to assess the available information, right? तो आप क्या देख सकते हैं? आप देख सकते हैं कि propose क्या किया गया है, जो भी government sitting है या फिर जो भी government in line है आने के लिए. Evidence क्या provide करा रही है कि जो propose कर रहे हैं उसे कैसे से uphold करेंगे? क्या वो cost benefit देंगे इस country को? कौन सी community, कौन से section सबसे ज़्यादा affect होंगे? क्या पॉसिबल बेनिफिट्स हैं उनके प्रपोजल के और क्या पॉसिबल डाउनसाइड्स हैं उनकी स्टेटमेंट का ऑफिशियल सोर्स क्या है ये किसी का ओपिनियन है एआई वीडियो है कि जेन्युइन किसी की स्टेटमेंट है कोई प्रीवियस वीडियो आज रन कर रहा है उनको डिफेम करने के लिए कि जेन्युइन रीसेंट न्यूज़ है सो यू हैव टू असेस एंड मेक योर ओन डिसीजन बिफोर डिसाइडिंग हुम टू वोट फॉर Again, the youth is more dependent on social media, so it has to be quite active and groundbreaking to reach them out. Aapko malum hai, voting is a perfect platform ki youth

आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। इट डजंट मीन में शाउट करना है, नो। इट कैन मीन लिसनिंग, लर्निंग, आस्किंग क्वेश्चंस, अग्री टू डिसएग्री कर सकते हैं, अपने फैक्ट चेक कर सकते हैं, अपनी रिसर्च बिल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से और डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोगों से जुड़ सकते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकते हैं। एंड फॉर एलिजिबल सिटीजन्स, पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि सारे लोग एक को ओपिनियन रखेंगे। डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये है कि सारे वक्रे ओपिनियन रख कर भी कट्ठे तोड़ सकते हैं। आप फैमिली में देखो, मॉम डैड के ओपिनियन अलग होते हैं, भाई बहनों के अलग होते हैं, एंड व्हाट्सएप फैमिली चैट, तो यू नो व्हाट आई मीन।